नबनिबाहै अनबनिबाहयो लामसुगु नरग नजतनो तिनिनि शालकमा पांडवो फुंगाइखेनो तुमुं वाती मेसे मेसे थप थप कालाइजाग तैलम दगलम फ्योगी नैमले वाती से रूप रूप कालाइजाग अम्हाई जरावो तुमुं एफ एम उज्जैन तो वो शालका मानी पांडा नी कॉक गाते हो शाना नी ने कॉक करे खमं ताकुते बुखुक संग सिंतिनी शालका मा पांडा वो ओ वाती नो तीनो कॉक शालने जंग वन शुगु ने दिखा ओ हबर चनोबुसक हमजा जराती वाती वावो जराती बो सातों बो फायो फिया संकिसा सातों तुम खांकन छिन बुखुक तुई नखरी थांगो बुखुक सीतरा रो तुम सुखा आसक तुम हने तुम का वाती फाय अंके वाती फाय हन जागो किसा वाती फाय अंके वो ताम से गासु वासु के ताम ने बगे ओ वान सुमु ताम ने बगे फाय ओ हावर जी चीनी बगे बस कहाम नारा कॉल कॉक दुबई करंग मानो 2326253 कॉक दुंग नंबर मोबाइल यूजर 0381 और कुट नंबर बोरी मानो फिर सिने काई नहीं कॉक दुंग नंबर खुलोग जाक तुंग नहीं सिने काई नहीं कॉक दुंग नो नरंग बागे खुलोग जाक तुंग नहीं नरो कॉक दुबई करेंगे मानो

0: 비싱데이 소사노 그방케 클레이먼 칸케 따보 하디라고 보 팔레 랑푸셔로 아지오이 농도 공고 주바이마노 따이 노고 보하노 자이마노 아식스라 카나라케 소사 가이마나르게 포키사
1: 파데케 따보 사카모 데모 베마노 또이 코타 쳇하니 실라이노 어저라 와티몬니 저라 अजरा वो डेंगू बीमार बेलाय एनानि जरा अबनि बागे अजरा हजाक तंगना नंगो किसा मैसा लुंकांगां की शाक नंगे तांग दी अबो डेंगू बीमार फनो उंगे मानो डेंगू बीमार कैसा वायरस बाई कॉलब जा कैसा बीमार ओ बीमार कैसा थांपुई एडिस मुंगे कैसा थांपुई वार्मा बाई ओ बीमार छलो Correction check me take correction chago, approach hollow jeporo tampu, tamini wario. Bini marido bahai, dengo bemaranka baki sininai. Benai lumnai, bokrok sanai, pikung sanai, mokol sanai, sakur belaino ransaitanai, sakuro kazakazak marinok sanai, bohok sanai, uramuram kapanai. Oramram kapanai evake thibu kapanai kise tui ingnai kima kapamai baksa thibu phaimanu hamana sanani belai bejwang manu lengnai hekaba basak aimuyuk ingnai obahiro gungi donghangangke sagnangya tangdi dodi dodro gana ginini Shakam no gotang in a shag naijagdi. Mutunarni Osuno Palong ni Biti Palong ni Biti Baitazajil Shakam naikini kalaineni kog biti nayawi. Obobai Jebe maro kalajag Bo Kahmi shalai Hamiapano Unni tamano Mutumanaraknai Dengo kasuna bagine Dengo beamano kasuna ni bagine बिथि बरान छाय निनि छाकथार मु जतनि छाय काम को अबोंखा नक्षन करी साफ सुथरा के तंदी तई कसया खलाई नै तंदी जे देखे आतियो थामपुइ बति ती मेते तंग कांके तई कसा कांके तई कसाय तो मा जागा वो थामपुइ बति तीयो बति ती कांके आरुन छिमिनो ओ देंगो य थामपुइ एरिमाना अबने बगे नगाना गिनी Kumkaimani top, tekabai, baltikabai, rabani mala, atike gari tayar, saikani tayar, avorokno, narkarani mala, avorokno, rumuita tondi, arotika sakanke, arono, borogni, joton chai, oi tampuini, kaham zaga handago. Edis, o tampui, bosh halowaro, amuni bagine. Ojarawo yakte kolok kamsele chumna nango jeproban thudi shalopanang tung horopanang tung gunda sangi thudi tai nokni janala tai dogalamo nangkhang khangke thampui hawai meja netrok thepadi angya hampano hati baro waini filter ni tei fristo fris ni simina khomani tei tai top ni tei no Kibiridi Mutunaru Tai Obiamar Nkanki Shaknangia Tangdi Gana Ginini Shakam Nogo Maganango Shakam Naijagdi
0: Aho Parigasin Tabakanayana Hayan Karango Koktum Rock Department of Higher Education Bukhakte Law Entrance Amjongung ओ जुलाई तनि पने छालजुगु छालो उनानि छजका आबंगन बीबीएमसी अथवा वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज कॉलेज तिला अगरतला वेस्ट त्रिपुरा जरांके फुंग दामजि सानि सिमि छजरा दामछा जराव उनानि छजका তাই রিপোর্টিং খাঞ্জ।

저랑께 살 봉니 담주고 다이 셔티 담지워 관련하는 샤자카 하스테 하퍼니 삭탄마와이 조갈리젝 라이브 마르그작 카시 나다이 아브나르그이 테르타이 바니 천자작나이 오 주라이 탈리노 부스캉 살 नेसिनै साल नेसिमी साल नेसिचार साल जरा सालसिनी रमै ओ खर्ची मताइ तै तेरतै बानी कसाम आउली चतुर्दश देवताबारी मताइ नौ बसकंगों नेहनी सजग खा अवहिन तेकाजसं मेलेन सिपाही जला हांकर तिनी सिमी खना जरा सानेरो मै सिपाही जला हांकर नी मिशन वान छक तांग न सानेरो मै ओरिएंटेशन ताई एक्सपोजर पांदा एकबा प्रोग्राम अंगने हने साजा खा तिनी सिमी ओ जुलाई तालनी न साल चीसिनी साल जरा फेक मुंग याकाकजाक भारत सांगोतांगन रगई आपन रगई कांचनपुर बखाक्स्तेनी नाइकल मुंगनी साक्थार्मा बाई कैसा नॉक आउट फुटबॉल थंगमुंग याकाबा फुटबॉल टूर्नामेंट जेंगजाने हिनी साजाका बाइखुरा बाइखराव ओ जुलाई तानिनो साल चिदक साल मारिवो रथ यात्रा नहिनि साजाका अब बाइखरा जगन्नाथ जीव मन्दिर निसिमी अंखरै बाइखरा हाती याखबा बाइखरा बाजार ओ गुरिवान हनै साजाका अब आरोते साजाका कक्थुमताई हुकुमु नायखुनि बखाक्तै सालचिनिरमै छानजाजराव हुकुमु पान्दारा वहाइन जुगाल जेंने हनि साजाखा आबो हाइन उदयपुरो बहाइन लाइबुमा रुगजाक रथ यात्रा नरगै ओ जुलाई तालिनो सालचिदक सालाव जगन्नाथ बारिनी रथ यात्रा तेर जेंजागन हनै साजाखा आरो वहाइनो कक्थुमताइ हुकुमु नायखुनि बखाक्तै जुलाइ तानि सालचिदक सालनि सिमि साल निसिब्रै साल जरा रथ यात्रा नरगै कैसा हुकुमु पान्दारा वहाइनो जुगालि जेंने हनै साजाखा आसुक जरा खनारायके कक्थुम रक हाइनो खरंग तब खनारायने सेबगो बरकतंग मनि कग्र सेबगो बरकतंग मन कग्र ग जों तिनि नालेने रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड एखबा आरआरबी ओ टेक्नीशियन आसुक थायो बरकतलांग जाखनाय अबनि कयब्लेनानि पाइथाक सालंके पाइथाक सालंके बसकां ओ जुलाई तालनी न फाइनाय साल निसि जुकु सालनि बिसिंग रहना नांनाय बुक्स आजुक थायन बिसिंग दङ टेक्निसियन ग्रेड 1 सिग्नल आबो बेबगै दङ थामरा निसि थाम रेंमारके फिजिक्स इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर साइन्स आईटी ओ तङ नाङै एखबा बीएससी डिग्री तंगा नंगा नंगा नंगा साजाखा हायकबा बिसिक तामनी इंजीनियरिंग डिप्लोमा याखबा बीई बीटेक डिग्री तंगा नंगा नंगा नंगा साजाखा अबनो करी ते कैसे तंगो टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरों के बेबगे डॉक्स है नेरा ब्रिशी ने खलाई आचुक थाई तंगो अबों के क्लास 10 पास लगीवो एनसीबीटी याखबा एससीबीटी वैको सिजाक ट्रेड आईटी

0: जिब्रै डिग्री ते खामावो नैजिदक डिग्री सेल्सियस नि गानागिनि तंगैमानो दिनै फुंनि खामानि तंमारि तंमानि नैजिदक डिग्री सेल्सियस थांनाय दाम नैजिब्रैयो वातै वामानि मारि ओंखा नै दशमिक सा मिलिमिटार ककब्रक बाय ककतमा परिमं ताबुक जरातै अरन पाइखा उलनि ककतमा आवायिंगानो सानजा दामसिनि तामै सति ब्रैजिबाव
1: আকাশবাণী আগরতলা।

जरा खाना तो मैं नहीं नरक नहीं कोई हर जगह से मैं स्नेह बिचिंग थे खाना तो ग्रसा मैं हाँ यहाँ और जरा ते कैसा बाय फ़ोन का हम आंग है जमारा काम लेम्बुशरा सीमा संखना ना काम बुशरा नी अनि मुंखे फुलों दे प्रमा अनो गान गान कैसा खाना रे बाय पार्मिता ते नहीं खून बार बार रख जोरी थांग रख प्लीज बाय आओ अब बुकुक तैसिंग हो किसी संग खाना रखा और जमुनो खुम्बार बार जोरी थांगरे रखने नंग खनाय मान के तो शाइनो मान खना आओ फ्याबा और जरा जंग जरा करे दहना ये जरा ते कैसे पंडा ने बखा खा थांगे चोंगो आओ ते कैसे पंडा ने बखा जरा थांगे चोंगो फ्याबा चाय चोगा ना ते कैसे है ना है पांडा रेडी कुयोसो नरक नो कोई होरो नरक करंग होर दी अब निया गुलो हानु है नरक दी हमजग मा चीनी खातों मा पांडा वो नरक हानु है कोगदुंग ने बिशिंग थी करंग कई मानाई आउंगे पांडा चोया करे खने दोंगी लोगी दी दोंगी और जरा कोगबरो कोगतो मा बुबागरो किसी सा खनाला एनु

आउ खबंग मारे किसिंग जरा हर रेडियो को इस पांडा है दा रेडियो को इस पांडा बिनी अगले नरक ने हम जग मा चीनी खातों मा नरक कोक दुक करेंगे मानो 232-6253 और कोक दुक नंबर और जरा नरक है रेडियो को इस पांडा वा नरक कोक दुक करेंगे ने नरक शायमानो आउट इन्हें फाइडिंग ने पुल्ला और जरा जियोग्राफी उवाल नतीने शंग

आप हिंगे ओ जरा सिंग शाखाम निबा शाखाम निकॉक और हेल्थ निकॉक बोतंग है दा हेल्थ एनवायरमेंट जियोग्राफी तो सिंग सिलागे कैसे हाई हेल्थ निकॉक न सिंगलेना आओ सिंग चीनी शाखा नॉर्मली टेम्परेचर बसुक नानी नंग बसुक तापमात्रा हाय के बसुक डिग्री फारेनहाइट

0: हामी हेलाम्सोको खनाई दुङ खापाङ ताको बुखोक ते मारे किचिङ सुङ एफएम उज्जैन तो 101.6 मेगाहर्ज ते जरा तंग अंग रेडियो को इस पांदव अंग हेलो लिदा सिंग सिंग दुङ ले मनि हा रेडियो को इस पांदव जिंग गबां माकोक शाखाम हायकेबा जिंग हेल्थ निकोक न तुइबो सिंग सिंग दुङ ले मनि हानो हाय ते कैसा को ते कैसा हसुङ मुङ अबो बेलाय खेनो कलाइसा ताब तो जेसो बरोंनु फानो से सिंग सुगर हायकेबा डायबिटीस मानजा गो हनि सिंग साइमानो बखनाओ नो बुनु गो हाय दबा किसी हंगन सिंग डायबिटीस मानजागो कि हंगन डायबिटीस ममांग नो हनै जेसु नो फानो खानाओ कामी आमचाय हिंदी आगोली दोली शहर हिंदी जो तो जागानो बाहायन ओके हो डायबिटीस नो नियंत्रण है के बबोनो कंट्रोल तोंगना बगाई तो गबांग मा चामुंग तोंगो गबांग मा फ्रूट्स रोग तोंगो गबांग मा फल फकरा तोंगो आ फल फकरा नि बिसिंगो जों बबो हाय फल फकरा चाखांगा गाय जों डायबिटीस नो कंट्रोल तोनी मान आबो तमुनो नरक सायमन के सादी ताबुक तो थाइसुंगनि जरा थाइसुक दां खाना आंगुर दां खा हायके बा जामब्रा हायके बा लेबु आबो द तमुनो सायमन खान के सादी डायबिटीस नो जों थै चिनी चिनी साग थै नबो जों आबो नो तामनानि थै नो ब्लड सर्कुलेशन का हमके तोना बागै ते डायबिटीस नो जों कंट्रोल के तोना बागै रख जों डायबिटीस मानजाखनानि सिकांबो बा के मानजागै तंखांगेबो बा हाचामुंग रख चानानि नांगो बु मुखै नरो साखांगनो थाइसुग आंगर हायके बा जामबुरा हायके बा लेबो बु चामुंग नो चाखांगै जों चिनी ब्लड सर्कुलेशन हायके बा डायबिटीस नो जों कंट्रोल तोनिमान करंग हो दी 2326253 हेलो
1: हाँ ते कर चलाम दुर्जन
0: शादी ताको
1: आम मान जाम मान जो बेलक की ना ओ गुज ना मान का खंड खंड बेलक की ना कतम सुनाई जन खंडर मार खंडाई सुन ले बो बुत राव मान नाई जिसकी ले बो बुत राव नंग खंड का ना बेलक की ना वो खंडाई

0: 아우 그네 빨리 게 땅차 그네 더더욱 하르자몽 해다 라컵 어른데 불만이 커롱 베르 잡자 그르자몽 어제라승 꼭둥이 파싱 탕내는 땀힌 아 오늘은 네 함정 마치니 카동마 반다 2326253 버스강어 03 에드반드나 따폭디 파딩게 어제라 꼭둥이 파싱 그릉이 날리는 샤브도 헬로
1: 비포 카함 바이
0: 비포 카함 람소고 따콕 샤붕카
1: Ang sumbu debu ma yang sidang kupra.
0: Biang ni?
1: Sidang kupra.
0: Sidang kupra. Biang kata kuga ba?
1: Oh, bayang ranim bazar.
0: Oh. Dah hindi takuk buri sami.
1: Hindi toki ni kene mana
0: belum. Hmm, cadi.
1: Rata ki songgom ni.
0: Buri sami.
1: Tu bolu ke hati hebun ta.
0: Buri sami takuk?
1: दो बोल
0: कहती है ने दो बोल कहती है ओ क्या अंगना तो को नया ना दो
1: ए हम भाई
0: आ तक को संगो कोई हर जगन सिदम को प्राणी राधा की संग संगम ने अ बुरजम खा तुम ने रोक हर जाम रो कोई हर नहीं शहर नहीं तो खान के खाना हर नहीं तो के सरे सरे की किसा शहर के बेले न जानाई तो वंशा जंगा ने जुगनानी ते कैसे कह दो हेलो Hello.
2: Angyang konam tahun kontrol sehari tunggu.
0: Ah, tu sehari buku.
2: Oke, pak gua aku audita jam dia ni. Kenar dia anu.
0: Buku ni mungkin dia sehari di? Kontrol ki do. Biang ni?
2: Yang konam tahun ni.
0: Sunam Thakur. Biang kata buku gua apa kah? Sunam Thakur.
2: Abu yang
0: Do do, Sunam Thakur na. Do, Anita.
2: Anita Jambiani. Anita Jambiani, kanu. Ani mokol tu kango. Nengen nukari kango, mana yau kano.
0: Do do do, ani mokol bus kango. Nai tu kini em do. Do do. आओ हाँ हनी मोकल बस कांगो हनुमले हनी और चामुं कोई हर जगह बुको का नाइटों का नहीं है ना

आउ खाने टोंगले बने खाना तो कर सामुंग हाने हाई दासिंग आउ सिखर नि ताखुम नागरा या दिल तो के निर चामुंग कोई होर जक टाइटल सॉन्ग ने फिया बा टाइटल सॉन्ग तो मनो हनी आ जिंग मानो बाप खाना लेने फजी ताखुम नागरा नि रचामुंग दिल तो के

सिंह चीनी खरक्सा ताकुक उदयपुर फाजिंगी उदयपुर महारानी नी ताकुक राजु दिल लागालिया नि रिसाब जग रिजाम दिल है तुम्हारा नी और रिसाब जग रिजाम नो कोई हरमानी बीनी ने खनाई नहाले।

0: कमाल है, पाड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो।
1: अपने अपने आने की खबर नहीं थी?
0: खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं।
1: नहीं मंजे, इतने दिनों से आए नहीं ना आप। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलता।
0: अशोक युद्ध पर जा रहे हैं, आरती नहीं उतारोगी? तुम घर की बड़ी बहू हो,
1: साजो श्रृंगार से तो लगते ही है। येसुदासी जरा आरती की थाली लेकर आना। क्या बसा,
0: हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी।
1: अकेले कहाँ श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार बाड़ा के काम को संभालते हैं और शाम को राघव बा को लेकर कीर्तन सुनने जाते हैं। कल तो स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, आपको भी सुनाते? या नहीं थे बसा?

0: तुम्हारी वजह से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा है, जो भी सजा देना चाहो हम हंसते हुए ले लेंगे।
1: सजा नहीं, आज तो हम आपको खुशी देंगे।
0: मर्जे,
1: आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे। राम,
0: तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो।
1: जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी। बस

प्रीक्वार्टर फाइनल का सका भारत की चरण हर दाम चीनी छती थामची प्रीक्वार्टर थमुंगन स्पेन बाय पोर्टुगल तैके थमुंग फुंग आचरी चिरी दामबा छती थामचियो बेल्जियम बाय अमेरिका थंगलायन त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन नाइकल जाक बुरीरोग ने अर टी ट्वेंटी क्रिकेट थंगलायमा दिनी कायदक थमुंगा नरसिंह ने पीटीए थंगलाव कायनी थमुंग तरुण संघ कोचिंग सेंटर रान सारा बुरी बाय आगरतला कोचिंग सेंटर नाथाय मॉडर्न क्रिकेट एकाडेमी रान नुची बाय ब्लाइट क्लाब नो मेचनखा एमबीबी स्टेडियम संजा कायनी थमुंग कस्मोपलिटन क्लाब विकेट कायची बाय रॉयल कोचिंग सेंटर नाथाय रामनगर स्पोर्टिंग क्लाब विकेट कायचार बाय यू बी एस टी नो मेचनखा टी आई टी थंखल कायदी थमुंग ब्लडमोर क्लाब विकेट कायची बाय यूनाइटेड फ्रेंड्स न तय कर्नेल कोचिंग सेंटर रान नुची बाय उपलंग क्लाब न मेचनखा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन नाइकल जाक हास्टे बेराम सिनियर क्रिकेट नि प्लेट पुल दिनी थमुंग कायचांका उदयपुर संजाक थमाव लंग ट्रेबेली विकेट कायब्रै बाय अम्बासन मेचनखा सान्ति बाजार वातनि बागै जिरानिया बाय खयनि बिसिं थमुंग कारि रोजाखा नवद्वीपनी ककटमा बसंग दाम नुचिब्रा हास्ते सालग्रा सिपाही जला खुआ गुमटी तय सालतांग हांगर फेरंग गबांगा वाते वाई नवद्वीप नायक हजा क्लैरिका खनाक सालनी तुमारी साको थामचिदक डिग्री सेल्सियस तय खाम नुचिब्री डिग्री सेल्सियस गानी टीमान दिन सालनी तुमारी साको थामचिनि डिग्री सेल्सियस तय खाम नुचिबा दशमिक चार डिग्री सेल्सियस टंका पाठक ककटमा बुबाग्र तयसा पड़ो मंत्री बक्रक तीन इंसमी सालदनी बगै इंडोनेशिया अस्ट्रेलिया तय न्यूजीलैंड बेरायना थांका डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखोपाध्यायनी तीन फिल्डसारों निचिबा आचाइमा साल हा कतर बक्सा हास्टोब पालाई जाका त्रिपुरा रंगचा नाई मथबे नाइकल जाक माध्यमिक कचु माध्यमिक बचर बाचा आमजमुंग तीन इंसमी चेंगजाका ककटमा तीन बगै अरण पाइखा ओलनी ककटमा आवाई खना पुंग दामचिनी छती ब्रिचिव

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
5: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
6: राज्य सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
7: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिन तक ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में तीन T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय

साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।